ऐसी जगह पे पन्ना कुल्लूगा वन्नी पी मायू ने अम्मा वंगा लोग रचुंग मियाल पुंगा ते पन्ना कुल्लूगी अको ते कुल्ला सुन्या पे पन्ना कुल्लूगा.